मर जाना चंगा है मर मर जीण तो, दसके वाले मुकद्दर नू ना रोक हुण पीण तो। बड़ी एक

जो भी वेखे खिड़ खिड़ जावे, भुल जावे ओ अपना दुखड़ा। कोमल मन ते शुद्ध हिरदे विच रब्बी रंग दसदा मुखड़ा। जो भी वेखे खिड़ खिड़ जावे, भुल जावे ओ अपना दुखड़ा। जात मज़

मैनू जानी ना तिला भौकर बन के हूं जदूं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पखियां।

असां कदे जोश विच आके अपना होश नहीं खोया, असी अग अंदर बाल दे कदे आक्रोश नहीं खोया। हुण होना जो तू वेखी मैं ता घमसान।

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पन्नी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पन्नी ही पैनिया। असी दिन रात

मारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। तारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले।